0: लगिहाल्यो नि पाङ्रेले. पाङ्रे पनि के भन्नु, छोरी लगाएपछि त ज्वाइँ भइगयो. हस् त हस्, नमस्कार.
1: अरे पुरानुआ,
2: कहाँ रे भैया?
1: अरे शादी वादी नहीं का,
2: अरे लड़की मिला ना?
1: लड़की नहीं मिली.
2: अरे क्या
1: समझा?
3: Style singer Arjun Kaushal.
2: Are